सदगुरु कृपा करे, बख्शिश करे। गुरबाणी की पंक्ति सानू कहती है इहदे बारे।

आशुद रस दिल दे बेड़े चानन होसी, दिल दे बेड़े चानन होसी, दूर चना दे चरना निश्चय करना, दिल दे बेड़े चानन होसी।

जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आने हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पा, सत संगत हर मेल प्रभु हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला। हर कृपा कर सुन बेनती, हर कृपा कर सुन बेनती, हम पापी किरम तरा।

रे सुर नूं ज्यादा लगाउण नाल प्रधान सुर बनेगा और उस दे नाल संबंधित सुर पंचम लगाउण नाल वजीर सुर बनेगा और श्री राग दा स्वरूप कायम होगा। ये दोनों सुरां ते निर्धारित श्री राग दा स्वरूप है। तो आप श्रवण करना, साहिब गुरु रामदास महाराज जी ने इस राग अंदर यह शब्द गाया है। यह मैं तुहानू ध्रुपद ताल के अंदर श्रवण करा रहा। साहिब गुरु सच्चे पातशाह ध्यान करो, उन्हां दा रागां नाल तादा नाल कितना प्यार सीगा और किस तरह क्या सोहणियां रीतां आप बंदिश करदे और सत्संग दी सुनाउंदे हुंदे सीगे। श्रवण करना, धन गुरु रामदास, सारे आखो धन गुरु रामदास।

पूरे जो पड़ताल है जिसनु पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना। जिवें हुण पहला जो रहाओ है वो ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इस नु असीं दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इस नु पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। यह ग्रंथ जो है सर्वलोक प्रकाश की बाणी है। धागड़ दी धर्म दृढ़ तांग दागड़ दी दिम दिरना, बागड़ दी ब्रिते बांग तागड़ दी तोम तोम तोम दिरना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कोम किरना। इस साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कोम किरना। इसका अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगानिया और ताना लगानिया। कुम किरना नाल दे दे ताल दागड़ दी दे दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाए। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना। बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना इसनू कीर्तन कहेंगे। जे राग ते ताल कट दियो बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

0: Pietro!
1: श्रवण करो भाई बलबीर सिंह जी ने रागी जते पासों शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।

सब में राग दया प्रभ एक है, सब में राग दया प्रभ एक है, सब में राग दया रहया रहया प्रभ एक है, सब में राग दया।

राम रे राम राम रे के जी सब में राम रे राम बस गई सब गांत बनाई जब के साल संग तो भाई ना को भाई नहीं दिखाना संग संग हम का बने आई जो भाव की नो लो वरमाने होए मस मस साधु दे भाई सब में राम रे राम राम रे राम राम रे राम आ बाबू एक है सब में राम रे राम

चार पांव और श्रवण करो। पहला चार ताल है, फिर तीन ताल है, फिर दो ताल है, फिर एक ताल है।

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौश, चंद्र कौश, सूर्य कौश, जोग कौश, चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात्पराई, जब ते सात संग तुम पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो प्रभ की नो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई, सब में रव रहे प्रभ लिखते देख देख नानक दिखसाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने ए तराना जेड़ा है ए अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इथे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहन लगे जी सिखां दा राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा साडे सामने ना किया, कहिंदे असल वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ, कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ, इह तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी इह सानूं लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी ही नहीं। मैं कहा जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को ही यह दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नमस्कार की, इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब वाला। तो तराना श्रवण करना साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ अंदर विद्यमान ने, कभी आप दर्शन करना।

दयालु होए मेरा स्वामी, किस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की।

0: फिर अजरीफ शरीफ गए अजके फरीद साहब। गुरु नानक साहब ही पाक पटन गुरु नानक साहब नू फरीद साहब मिले, आपो च नी गल्लां होईयां इतादी ते कलाम उन्हां दी गुरु ग्रंथ साहब च आए। जदो मुरशद तारन वास्ते मुरशद ने कहा अच्छा तू आ गया, बड़े प्यार नाल सेवा कीती और सेवा इको ही लगी कि तू इशनान ही करा, लकड़ा सवेरे बालनिया अग बाल के मुरशद नू इशनान करा, फिर हुजरे च जाना इबादत वास्ते। जिस तरह गुरु अमरदास जी ने 12 साल लाए ब्यासा तो जल लिया, गुरु अंगद साहब नू इशनान कराया, गुरु 36 साल दा और चेला 62 साल दा, सिर्फ एक गुरु तहरन वास्ते इनी सेवा। जे डिग भी पे खड्डी विच जलाई ने कहा, जलाई ने पुछया ए कौन है, जलाई कहन लगी अमरू न थावा, जिन्हों किते था ही नहीं, पर गुरु अमरदास जी कहन लगे मैं ते मुरशद वाला ते था वाला कमलिए तेरा ही कोई नहीं। मैं बेनती करा 12 साल दी भगती बहुत है, पर मां ने किन्ने साल लवाए पक्या करन वास्ते। स्टूडेंट एक सबक नू रोजाना रिपीट करदा पर मास्टर कहिंदा फेर पढ़, हैरान हुंदा क्यों पढ़ाउंदा, मास्टर दा मतलब हुंदा जदों किते परचा दवे इम्तिहान होए फर्स्ट आवे। तो अज फरीद साहब जी दा अखीरला समा सी, इन्हां 12 साल होर लाए। अज मुर्शिद ने भी ऐसी कला वरताई के मींह ते छखण ते लकड़ां भी भिज गईं और डब्बी भी कोई नहीं, ते फरीद चादरी विंडो खोल के बारी खोल के गलियां विच चिकड़ा ते मींह वर रहा है, कोई कमलिया भेजेगी।
1: ये पावन पवित्र शब्द आसा महला पहला धन गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया, जिस शब्द अंदर सतगुरु सानू उपदेश देते हुए एक गल समझा रहे ने। कहते ने हे मनुख हे इंसान जोत वेख जात ना पुछ, क्योंकि साडा संबंध जोत नाल है जात नाल नहीं। जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत जोड़दी है। दोनों गल्लां दा ख्याल रखना, जोत पुछण करके निकटता आउंदी है, जात पुछण करके मनुख मनुख तो दूर हो जाता है। हुण ये बचन सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने आख्या नहीं करके दिखाया, जानो जोत ना पूछो जाती, जोत वेख पाई जात ना पूछ, क्योंकि जात ने हमेशा तोड़िया जोड़िया नहीं, ते जड़ी जोत है वो एक कर देती। हुण सतगुरु उपदेश देंदे हुए समझा रहे ने कुछ गल्लां आपदी चोली पावां।

रामदास चक्रवर्ती है ना सदगुने थे बुंजा जातन उसाए बुंजा जातन हर किसी ने आवाज मारी है आओ भाई गुरु नानक ने दर ते कोई भी आ सकता है केवल किस लिए किसे लिए कि सब नु एक जोत करके जानिया एक जोत करके मने धन गुरु अर्जन साहब ने ते कमाल ही कर दिता धन गुरु अर्जन साहब ने अपने पिता गुरु रामदास की चलती हुई मर्यादा कायम करते श्री हरिमंदर साहब न बनाया हरिमंदर साहब के चार दरवाजे रख लिते चार दरवाजे रखण का कारण ही यह कि इन चार दरवाजा में किसी मजहब का किसी धर्म का कोई भी बंदा आ सकता देखो ख्याल करना हरिमंदर साहब की बनत्र कैसी है रस्ता इको है दरवाजे चार आणदा भी एक है जानदा भी एक किस असी जात का रौला पा रहे सतगुरु ने तो सानू बड़ा कुछ समझाया पर यह गल साड़ी समझ अज तक नहीं आई धन गुरु अर्जन साहब वेखो कमाल की गल ऐसा हरिमंदर बना दिता है जो दुनिया के विच इको ही बल्कि यह कहना चाहिए कि मंदरां तो दुरकारिया नू थां देन वाला केवल हरिमंदर है एक नजारा तुहाडी चोली पा रहे हैं।

अगर कोई चोरी दे तन दी अरदास करता है, पता भी है कि जिदी मैं अरदास कर रहे हैं एदी

कहन लगा मेरे कार बच्चे ने जन्म लिया, ब्राह्मणा ने प्रसादा नहीं छके, कहन देने तेरा कार सोतक वाला। ए दुखी बैठा सी, किसी ने कहा दुखी ना हो। इथे धन गुरु नानक साहब आए ने, ओ सूतक पातक नहीं मनदे। इथे एक गल याद रखना, जिथे कोई जन्म लवे उथे कहा जांदा है सूतक, जिथे कोई मरे उथे कहा जांदा है पातक। इस प्रेमी ने कहा तू दुखी ना हो, गुरु नानक साहब दे कोल जा, ओ सूतक पातक नहीं मनदे, इन्हां परमा वहमां विच नहीं पैंदे। ए प्रेमी धन गुरु नानक साहब दे कोल आया ते बेनती की, महाराज मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया पर ब्राह्मणा ने भोजन नहीं छके, कहंदे ने तेरा घर झूठा है सूतक आला। धन गुरु नानक साहब ने अपने सिखां नूं प्यारियां नूं भेजिया, जाओ तुसीं प्रशादा छक के आओ। सिखां ने प्रशादा छकिया, उन्हां ब्राह्मणा नूं पता लगा ता उन्हां नूं इस गल दा मन विच बड़ा रोस जा गया। ए सारे ब्राह्मण इकट्ठे होके धन गुरु नानक साहब दे कोल आए और गुस्से नाल कहन लगे, महाराज

से फिटे गुरु बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद कीते कूड़े गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के ना विचारे।

हमारी जेहबा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम वड अगम अगम।

हमारी जय बा एक प्रभु, जय बा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाहे। जय बा एक कवन गुण कही है, तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने। कवन गुण कही है जेबा एक, तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी राम, मेरी मत थोरी राम, हम अज्ञान अल्प मत थोरी मत थोरी, तू समरथ वड़ा वड्डी हूं वड्डा।

तेरो थान तेरा थान सोहावा रूप सोहावा तेरे भक्त सोहे दरबारे तेरा थान सोहावा तेरा थान सुहावा धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत गल छाया तेरा थान सुहावा हर जपे हर मंदिर साजिया हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे हर मंदिर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते हमें अपराधी तुम बख्शाते जिस पापी को मिले।

जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाह, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला हर कृपा।

तो संस्कारें मिल के पड़िए और जतन करिए। जो गुरु ने सानु पूर्ने पाके दसे हैं किड़ा प्यार कीता गुरु ने साडे नाल, असी भी जतन करिए उन्हों प्यार करन। उच्चारण करो श्री वाहे। भाई शाह भाई गुरदास जी ने गुरसिख का गुरसिख नाल कितना प्यार होना चाहिए किवें दस्या? आख्या सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदी। एक बड़ा सुंदर सवाल है। सिर उच्चा है सब तो नीवे पैर हैं, भाई साहब कहते हैं फिर पैरां वाल सिर क्यों जाते? उन्हां कदमां दी की खूबी की है? सारियां पैरां ते तो नहीं सिर झुक जाता। उच्चारण करो श्री जी। सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे, मूंह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे। ये सारे चिन्ह उपर हन, मूंह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे। हजूर कहंदे न सब चिन्ह छड पूजियन। कदमां दी पूजा क्यों होंदी है? वो कौन कर्म कमांदे? वो कदम केड़ा कर्म करते हैं जिन्हां कदमां ते बदो बदी सिर झुक जाता है? उच्चारण करो श्री। अगलियां टुकां विच भाई साहब जवाब दे रहे हैं। आप कहते हैं भाई वो कदम तां तनता दे योग हैं, गुर सरणी साध संगति ने चल चल जाते। गुरु के सिख दे कदम सत संगत वाल जान चंगे लगते हैं। अमृत वेले उठ के गुरु का सिख इशनान करता है ते फिर मुख तो जप रहा है श्री वाहे। किधर चले हो जी? मैं गुरुद्वारे चले। किदी सोहनी सुगंधी है, कितनी सोहनी शोभ है, क्योंकि पहली पौड़ी ही गुरसिखी दी अमृत वेले जागना है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आकीदी पौजल बनी हुई सी, 10 लाख दा फेरा सी। इतिहास विच पढ़ो जदों आनंदपुर साहब दा किला छड्या ते एडे वड्डे पौजल विच भी उन्हां ने अमृत वेला बिना कीर्तन दे नहीं बिताया। जदों अमृत वेले दा समा होया, भाई दया सिंह साडा अमल टुट गया, गरीब नवाज समझ नहीं आई, अख्या आशा दी वार दे कीर्तन दा समा जा रहा है, ते उत्थे भी बह के आशा दी वार दा कीर्तन होया। हुण असी अपने अंदर छाती पाईए भई केड़ा सुख है जो वाहिगुरु ने सानू नहीं दिता, ते फिर इन्ने सुख प्राप्त करके भी असी उहदा शुकराना नहीं करते। उन्होंने तो सानू पूरने पा के दसे कि इतने पौजल विच भी गुरु के सिख ने अपना नितनेम त्यागना नहीं, ते असी एडिया सुखा विच रह के भी जे उदा शुकराना नहीं करते तो फिर सिख कदे होए? उच्चारण करो श्री वाहे। इसलिए आओ भाई, भाई साहब गुरदास जी पूरने पा रहे हैं कि अमृत वेले उठ के इशनान करके जो गुरु के दरबार जाते हैं, भाई गुरदास जी कहते हैं उन्हां नूं कह दिओ जिहड़े जोड़े उन्हां पहने हैं वह उतार देन, पता नहीं किस चमड़े दे हैं, आ मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बनवा के उन्हां नूं पहना दिओ। उच्चारण करो श्री भाई। गुर शरणी साध संगति नित चल चल जांदे, वतन पर पुकार नूं कर पार वसांदे, मेरी खलो मौजरे गुरसिखां दा। तो भाई इतनी निम्रता गुरु घर विच है, परस पर आपस विच प्यार करिए, जदों भी मिलिए फतेह बुलाइए वाहिगुरु जी का। हजूर का वचन है जेड़ा पहला फतेह बुलावेगा मेरा मुख उस वल होवेगा। उच्चारण करो श्री भाई। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो निवलाए, हर नामे की होवो जोरी, गुरमुख बैठो सफा विषय। आज जुड़े बैठे हो, हजूर कह रहे हैं सही सुंदर सोहने साध संगत जो बहने, गुरु नूं कोई सुंदर लगते हैं चंगे लगते हैं जो सत संगत विच बह के जपदे हैं। श्री वाह
ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬਰਕਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਰਥ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਲਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ।

भक्त रविदास जी का उच्चारण किया होया है। इस दे विच भगत रविदास जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रहे हैं कि ओ प्राणा दा नाथ सानू प्राण जीवन जिंदगी देने वाला प्राणा दा नाथ परमात्मा वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ ओ प्यारा प्राणा दा नाथ वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत दे किस भक्ति दे द्वारा ओ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। यह सवाल उठाया है किस भक्ति दे द्वारा यानी किस मेथड दे द्वारा किस टेक्निक दे द्वारा किस विधि दे द्वारा किस युक्ति दे द्वारा उसनु मिलन दा रंग राह अते ढंग की है। यह सवाल मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते

0: कहते हैं मैं परम गति पाले ही हूं। सबसे ऊंची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भगत रविदास जी दस दहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई। बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिए नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं
1: संत जना के संग मिल बारे
0: कमले इधर उधर ना फिर

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संघ है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं के नाल अपनी मित्रता पाई है कहते हैं ए जड़े कच्चे हैं इन्होंने तो इत्थे ही छड़ जाना है कहते हैं तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं प्रेम नाल गाओ

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसे नाल नाराज हुंने हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसे ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसे वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नू असी देखते हां, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसे ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जोरियो, अगर